0: Telegram, jo us recomanava aquí una gaveta sobre el SAT, no hi ha res més bé, el pla somar, but, vetri, gossanitza, mirant com s'ha dit, s'ho pot dir, sí, ara que li passa molt per s'ha de veritat. Però s'ha de cosa, aquí hi ha un gran de pur, l'altre pur, hi ha un gran de pur, no sé què, s'ha de s'ha dit, cada mateix, si no sé què. I tal que no, no hi ha una novena, li van poder, i ara no hi ha tant, o som sabent, i se
1: no,
0: pàtic, per fi.
1: No, no, se pot haver, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: Per a comunicar amb
1: बरस का घड़ी और विवर नाटक है मैंने अपने मुंह से जीवन बना दी आज तक आज भी ना कोई हाँ पहले पहले ये हम रहते तो उनसे करती रखना आज भी मुझे निकले हैं सारुकरण के दशानुकरण के आते हैं आप भी मैं तो मंत्र हाँ जैसे रहते हैं पहले तुम रहा अशोक मंत्र तुम मोर ससुरारी मोर ससुर सात स्वामी के सारे स्वामी प्रोग्राम बात कर बढ़िया बढ़िया जब तक हमारे मामा की इंदर बात किशोर की बात करना ये कच्चा घायल हो रहा मोहि का मोहिन में कहूँ तुम मोहि कच्चा कच्चा नाम से नहीं मोहि का रस कैसे तो करा देना मोर सार आदमी मान के अब पाशन में मोहित है पंडित तो तीन रात कही के दस तुम्हारे तीन मोहित है एक चक्कर एक दूर सुकुम्बासी में चार कट्ठा इतना भी नगर खाना नहीं तुम्हें कोई नहीं रहा था कहता छा नाना विवाह का आप जिसमें गाड़ी चलाई वहां बैठा

aquí salí para un que मान वृक्ष की आरोपण की पत्राश उठाने हमने देखी तो आधुनिकरण हमने सिखाई थे न कोई जन सीखना के बुराट सीखा जगह आदमी रूप से हमने हवा और नहीं सीखा

स्वास्थ्य विभाग अनुसंधान मंत्रालय इसी दिन मिली तथा रोग नियंत्रण

0: ఆదిశేషుడు తెలియవు గృహపరచడం ద్వారా సంహిత్మజారి సంతే.
1: गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा में प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हम ऐक्यबद्धता यहां को स्वास्थ्य सेवा आवश्यक पड़े में कौशल्य अस्पताल बासगढ़ी में संपर्क कर अनुरोध करद।

0: जारी पहाड़ी वाला पहाड़ को रूप दिखाए मानस ने पेशा का उसका पसार धर्म घटना प्रदर्शन यात्रा वाला काम करा की कतई खराब हो सकते सुस्थिति और आधिकारिक जानकारी को मत विश्वास करोस अपना काका सुरक्षित रखोस पूरी संख्या लगे तुरंत नजीक सुरक्षा कर्मी जानकारी दिखोस आपत्कालिक अवस्था में कम कर देंगे नेपाल प्रहरी 100 व 113 मानव बेच विकल बुद्ध प्रबंधो 1177 तथा बाल हेल्पलाइन 1098 में कॉल करोस
1: सजगना नजीक सुरक्षित समय मानव बेच विकल विरुद्ध सबल को साथ
0: हमी मेरे बात करो कर सकते हो मानव बेच विकल को जाओ आपकी यूनेस्को कोबरा प्लान इंटरनेशनल नेपाल को साझेदारी में जिला प्रशासन कार्यालय पटी द्वारा जनहित में जारी संदेश
1: महात्मा गांधी को

सेमीफाइनल में श्रृंखला श्रीलंका ने पाकिस्तान 8 विकेट और भारत ने बंगलादेश 114 रन ले हराते फाइनल में पुगे हुए। अब स्वर्ण पदक का लगी भारत और श्रीलंका बीच खेल पर्सि मंगलवार होने

0: समय अध्यक्ष प्रयोग को पूर्व प्रयोग नक्शा तथा समर्पित कार्यविधि वडा कार्यालयमा पठाइने एउटा जानकारी गराइन्छ।
1: शांति खाई व्यायाम सत्ता करी सुनापान मदिरा